अष्टम क्या है, अठवें गुरु बलवीरा बल वाले। जिन पहुंच देहली तजियो शरीरा। भाई गुरुदास जी कह रहे ने, हर कृष्ण पायो, गुरु हर कृष्ण साहब अठवें गुरु बड़े बल वाले सन। जिन पहुंच देहली तजियो शरीरा, जिन्हां ने दिल्ली पहुंच के अपना शरीर त्यागया। बाल रूप तरियो स्वांग रचाए, बाल रूप विच जिन्हां ने कई तरह दे कौतुक करके अते दुखियां दे दुख दूर करके दुखियां नु सुख दिता। बाल रूप तरियो स्वांग रचाए, तब सहजे तन को छोड़ सिधाए। ए गुरु दा कौतक है कि जिन्हां ने छोटी उम्र विच ही दुखियां दे दुख दूर करके अपना शरीर त्यागया। आओ गुरु हरकृष्ण साहब जी महाराज दे जीवन बारे

जैसी आज्ञा कीनी ठाकुर तिसते मुख नहीं मोड़ियो सहज आनंद रखियो गृह पीतर उठ।

तासो टूटी क्यों बने जाके जी परा सो क्यों विसरे जे गाल न पाने सो क्यों विसरे जे किया जाने सो क्यों विसरे

जिन्हां ने मेरा प्रभु पाया है, मैं उदी मिन्त करा, उदा तरला करा, उदे चरण पकड़ा, भई मैनू भी दस केड़े रस्ते तुरां ते मेरा मालक मैनू

असंख मूर्ख अंध कोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गड़बड़ हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे असंख मलेश मल पख खाहे असंख निंदक सिर

तीर्थ तप दया दत्त दान जे को पावै तिलका मान सुनया मन्या मन कीता पाओ अंतरगत तीर्थ मल नाओ सब गुण तेरे मैं नाही कोए बिन गुण कीते भगत न होए स्वस्थ आथ बाणी बरमाओ सत सुहाण सदा मन चाओ कवन सुवेला वक्त कवन कवन थित कवन वार कवन सिरुती माहो कवन जिथो आकार वेल न पाइया पंडती जे हो वै लेख पुराण वक्त न पायो का

आखह पड़े करह बखियाण। आखह बरमे आखह इंद आखह गोपी तै गोबिंद आखह ईश्वर आखह सिद्ध आखह केते कीते बुद्ध आखह दानव आखह देव आखह सुर नर मुन जन सेव केते आखह आखण पाहे केते कह कह उठ उठ जाहे।

गावह तोहनो पौन पणी बैसंतर, गावह राजा धर्म दुआरे, गावह चित्त गुप्त लिख जान है, लिख लिख धर्म विचारे, गावह ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सला सवारे, गावह इंद इंदासन बैठे देवत्या दर नाले, गावह सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे, गावन जति सती संतोखी गावह वीर करारे, गावन पंडित पढ़न रखीसर जुग जुग वेदा नाले, गावह मोहनिया मन मोहन सुरगा मछ पयाले, गावन रत्नो पाए तेरे अड़सठ तीर्थ नाले, गावह जोध महाबल सूरा गावह खाणी चारे, गावह

सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है पी होसी जाए न जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर वेखै कीता अपना जिवत सिदी वडियाई जो तिस भावै सोई करसी हुक्म न करना जाई सो पातशाह साहा पातशाहिब नानक रहन रजाई मुंदा संतोख सरम पत झोली ध्यान की करह विभूत खिंथा काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीते जग जीत आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजह नाद आप नाथ नाथी सब जा की रिद सिद्ध अवरा साद संजोग विजोग दोयकार चलावह लेखे आवह भाग आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस एका माई जुगत व्याई तिन चेले परवान एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान जिव तिस पावै तिवै चलावै जिव होवै फरमान ओह वेखै ओना नदर न आवै बहुता एहो विडान आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस आसन

आओ। भाग हुआ गुरसंत मिलाया, प्रभ अविनाशी कर मह पाया, सेव करी पल चसा न विछड़ा, जन नानक दास तुम्हारे जियो। हों कोली जियो कोल कुमाई, जन नानक दास तुम्हारे जियो रहाओ। तनासरी महला पहला, घर पहला चौप दे इको ओंकार, सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सहपंग गुर प्रसाद। जियो डर

मन बेदया दयाल सेती मेरी माई, कौन जाने पीर पराई, हम नाही चिंत पराई रहाओ। अगम गोचर अलख अपारा, चिंता करो हमारी, जल थल महियल भरपुर लीना, घट घट जोत तुम्हारी। सिख मत सब बुद्ध तुम्हारी, मंदर छावां तेरे, तुझ बिन अवर न जाना मेरे साहिबा, गुण गावां नित तेरे।

चौपई बहरुआ सुरका काठ समाथा श्री अस्केत जगत के नाथा द्वितय बान सौंदो अर कर काठ दयो अस्तुज नर नाहर पुनराशिष का काटा सीसा श्री अस्केत जगत के ईसा पोहपन ब्रष्ट गगन ते पई सभ न्यान बधाई दई। धन धन लोगन के राजा दुष्टन दाह गरीब निवाजा खल पवन के सिरजन हारे दास जान मोहले हो बारे। कव्यो बाच बेनती चौपई हमरी करो हाथ दय रक्षा पूर्ण होए चित्त की इच्छा तव चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट सभय तुम काव हो आप हाथ दय मोहे बचाव हो सुखी बसै मोरो परवारा सेवक सिख सभय करतारा। मोर अच्छा निज कर दय करिय सब बैरन को आज संघरिय पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा। तुम्हें शाड़ कोई अवर न त्याऊं जो बर चाहूं सुतुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन शत्रु हमारे मारी है। आप हाथ दे मुझे उबरी है मरण काल का त्रास निवरी है हूजो सदा हमारे पछा श्री अस्तु जू करिय हो रक्षा। राख ले हो मोहे राखन हारे साहेब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा बप तरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा जू थियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जछन उपजायो आदि अंते कै अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिने आप सवारी शिवकन को सब गुण सुख दियो सतरन को पलमो बद कियो। कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पिछानत चीटी ते कुंचर अस्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पिछाने कट कट के पट पट की जाने। जब उद करख करा करतारा पर जतर तब देह अपारा जब आकर्ख करत हो कब हूं तुम मैं मिलत देह तर सब हूं। जेते बदन श्रेष्ठ सब तारे आप अपनी बूझ उचारे तुम सब ही ते रहत निरालम जानत भेद भेद अरियालम।

अनुमानत महामूढ़ कछ भेद न जानत महादेव कौ कहत सदा शिव निरंकार का चीनत नह पिव। आप अपनी बुद्ध है जेती बरणत भिन्न भिन्न तुहे तेती तुमरा लखा न जाहे पसारा किह विद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा रंक पयो राव कहीं भूपा अंडज जेरज से तजकीनी उत्पुज खान बहुर रच दीनी। कहूं फूल राजा है बैठा कहूं सिमट पयो शंकर कैठा सगरी सृष्टि दिखाए अचंभव आदि जुगाद स्वरूप सुजंभव। अब रक्षा मेरी तुम करो सिखो बार सिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण काता। जे अस्तुज तव सरणी परे तिनके दुष्ट दुख्त है मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार ते आए हैं ताके काल निकट नह आए हैं रक्षा हो ताहे सब काला दुष्ट रिष्ट तरह तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे निहिर हो ताके ताप तन कुमो हरि हो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शास शवै सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास ते ताहे उबारा जिन नर नाम तिहारो कहा दारिद दुष्ट दोख ते रहा। खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी आप हाथ दैले हो बारी सर्व ठौर मोहो सहाई दुष्ट दोख ते ले हो बचाई। कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण शुभ राता किलविक सकल देह को हरता दुष्ट दोखियन को शय करता। श्री अस्तु जब पय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन बांशत फल पावे सोई दुख न तिसे व्यापत कोई। अड़िल सुने गुंग जो याहे सो रसना पावई सुने मूढ़ चित लाए चतरता आवई। दुख दर्द पाओ निकटना तिन नरके रहे हो जो यहाँ की एक बार चौपई को कहे दुख दर्द।

राम कली महला तीजा आनंद एको ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुर तां पाया सहज सेती मन वजियां वाधाइयां। राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईया, शब्दों तां गावहो हरी केरा मन जिनी बसाया। कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया, ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे। दुख सब विसारणा अंगीकार ओह करे तेरा कार्ज सब सवारणा। सबना गला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे। कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले, साचे साहेबा क्या नाही घर तेरे, करता तेरे सब किश है जिस देहे सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे, नाम जिन कह मन वसिया वाजे शब्द कनेरे। कहे नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरे, साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा। जिन भुखा सब गवाईया कर शांत, सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाईया। सदा कुर्बान कीता गुरु विटह जिस दियां एह वडियाईया। कहे नानक सुनो संतो सब धरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै, घर सुभागै शब्द वाजे कला जित घर धारियां। पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया, तुर कर्म पाया तुद जिन कौ से नाम हर कै लागे। कहे नानक तह सुख होआ तित घर अनहद वाजे, साची लिवै बिन देह निमाणी, देह निमाणी लिवै बाजहों क्या करे वेचारिया। तुद बाज समरथ कोए नाही कृपा कर बनवारिया, एस नो होर थाओ नाही शब्द लाग सवारिया। कहे नानक लिवै बाजहों क्या करे विचारिया, आनंद आनंद सब को कहे आनंद गुरु ते जानिया जानिया। आनंद सदा गुर ते कृपा करे प्यारिया, कर कृपा किलविह कटे ज्ञान अंजन सारिया। अंदरों जिनका मोह तुटा तिनका शब्द सचै सवारिया। कहे नानक एहो आनंद है आनंद गुर ते जानिया। बाबा जिस तू देह सोई जन पावै, पावै ता सो जन देह जिसनो। होर क्या करह विचारिया, एक भरम भूले फिरह दह दिस एक नाम लाग सवारिया। गुरप्रसादी मन भया निर्मल जिन्हा भाणा पावे। कहे नानक जिस देह प्यारे सोई जन पावे, आवह संत प्यारे हो। अकथ की करह कहानी अकथ केरी, कित द्वारे पाईए। तन मन धन सब सौंप गुरु को हुक्म मन्ने पाईए, हुक्म मन्ने हो गुरु केरा गावह सची बाणी। कहे नानक सुनो संतो कथे हो अकथ कहानी, ए मन चंचला चतराई किने ना पाया, चतराई ना पाया किने। तू सुन मन मेरिया एह माया मोहनी जिन एत भरम पलाया। माया ता मोनी तिने कीती जिन ठगौली पाईया, कुर्बान कीता तिसे विटह जिन मोह मीठा लाया। कहे नानक मन चंचल चतराई किने ना पाया, ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले। एह कुटुंब तू जे देखदा चले नाही तेरे नाले, साथ तेरे चले नाही तिस नाल क्यों चित लाई है। ऐसा कम मूले ना कीचै जित अंत पछोताई है, सतगुरु का उपदेश सुन तू होवै तेरे नाले। कहे नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले, अगम गोचरा तेरा अंत न पाया, अंतो न पाया किने तेरा। अपना आप तू जान है जी जंत सब खेल तेरा, क्या को आख वखाण है। आखें ता बेखें सब तू है जिन जग तू पाया, कहे नानक तू सदा अगम है तेरा अंत न पाया। सुर नर मुन जन अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया, पाया अमृत गुर कृपा कीनी सच्चा मन वसाया। जी जंत सब तुद पाए एक वेख परसन आया, लब लोभ अहंकार चूका सतगुरु भला पाया। कहे नानक जिसनो आप तुठा तिने अमृत गुर ते पाया। भगतां की चाल निराली, चाला निराली भगतां केरी, बिखम मार्ग चलना। लब लोभ अहंकार तज तृष्णा बहुत नाही बोलना, खन्यो तिखी बालो निकी एत मार्ग जाना। गुर प्रसादी जिनी आप तजया हर बासना समाणी। कहे नानक चाल भगतां जुग जुग निराली,
ज्यो तू चलाए है तिव चलहै स्वामी, होर क्या जाना गुण तेरे। जिव तू चलाए है तिवै चलह, जिन्ना मार्ग पावहे कर कृपा। जिन नाम लाए है से हर हर सदा त्यावहे, जिसनो कथा सुनाए है अपनी से गुरुद्वारे सुख पावहे। कहे नानक सच्चे साहिब ज्यो पावे तिवै चलावहे। यह सोहिला शब्द सुहावा, शब्दो सुहावा सदा सोहिला सतगुरु सुनाया। एहो तिनकै मन वसिया जिन तुरहो लिखिया आया। एक फिरह कनेरे करहें गल्लां गल्ली किने ना पाया। कहे नानक शब्द सोहिला सतगुरु सुनाया। पवित होए सेजना जिनी हर त्याया, हर त्याया पवित होए गुरमुख जिनी त्याया। पवित माता पिता कुटुंब सहत स्यो, पवित संगत सवाइया। कहंदे पवित सुनदे पवित से पवित जिनी मन वसाया। कहे नानक से पवित जिनी गुरमुख हर हर त्याया। करमी सहज ना उपजय बिन सहजय, सहसा ना जाए नह जाए। सहसा कितै संजम रहे कर्म कमाए, सहसै जियो मलीन है कित संजम धोता जाए। मन तो वहो शब्द लाग हो, हर स्यो रहो हो चित लाए। कहे नानक गुरप्रसादी सहज उपजय एह सहसा इव जाए। जियो हो मैले बहरहो निर्मल, बहरहो निर्मल जियो हो ता मैले। तिनी जन्म जुए हारिया एह तिसना वड़ा रोग लगा, मरण मनहो विसारिया। बेदा मह नाम उत्तम सो सुनह नाही, फिरै ज्यो बेता लिया। कहे नानक जिन सच तजया कूड़े लागे, तिनी जन्म जुए हारिया। जियो निर्मल बहरो निर्मल, बहरो त निर्मल जियो निर्मल। सतगुर ते करणी कमाणी, कूड़ की सोए पहुंचे नाही। मनसा सच समाणी जन्म रतन जिनी खटिया, भले से बन जारे। कहे नानक जिन मन निर्मल सदा रहे है गुरु नाले। जे को सिख गुरु सेती सनमुख होवे ता सनमुख सिख कोई। जियो रहे गुरु नाले, गुर के चरण हृदय त्याए। अंतरात्मै समाले आप छड सदा रहे परणै, गुरबिन अवर न जाने कोए। कहे नानक सुनो संतोह सो सिख सनमुख होए। जे को गुरते बेमुख होवे बिन सतगुर मुक्त न पावे, पावे मुक्त न होर थै कोई। पुछो बबेकियां जाए अनेक जूनी, भरम आवे बिन सतगुर मुक्त न पाए। फिर मुक्त पाए लाग चरणी सतगुरु शब्द सुनाए। कहे नानक विचार देखो बिन सतगुर मुक्त न पाए। आवह सिख सतगुरु के प्यार हो, गावह सच्ची बाणी। बाणी ता गावह गुरु केरी, बाणिया सिर बाणी। जिन को नदर कर्म हो वह हृदय तिना समाणी। पीवहो अमृत सदा रहो हर रंग, जप्यो सारंग पाणी। कहे नानक सदा गावहो एह सच्ची बाणी। सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी, बाणी ता कच्ची सतगुरु बाजहो होर कच्ची बाणी। कहंदे कच्चे सुन दे कच्चे कच्ची आख बखाणी। हर हर नित करह रसना, कहया कछु न जानी। चित जिनका हिर लया माया, बोलन पए रवाणी। कहे नानक सतगुरु बाजहो होर कच्ची बाणी। गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाओ। शब्द रतन जित मन लागा एह होआ समाओ। शब्द सेती मन मिलिया सच्चै लाया पाओ। आपे हीरा रतन आपे जिसनो दे बुझाए। कहे नानक शब्द रतन है हीरा जित जड़ाओ। शिव शक्ति आप उपाय कह करता आपे, हुकुम वरताए हुकुम वरताए। आप वेखै गुरमुख किसै बुझाए, तोड़े बंधन होवै मुक्त शब्द मन वसाए। गुरमुख जिसनो आप करे सो होवै, एक स्यों लिवलाए। कहे नानक आप करता आपे, हुकुम बुझाए। सिमरत शास्त्र पुन पाप बीचार दे, ततै सार न जानी ततै सार न जानी। गुरु बाजहो ततै सार न जानी, तिहि गुणी संसार भ्रम सुत्ता सुत्या रैन बिहानी। गुर कृपा ते से जन जागे, जिना हर मन वसिया बोलह अमृत बाणी। कहे नानक सो तत पाए, जिसनो अंदन हर लिव लागे जागत रैन बिहानी। माता के उदर मह कृपाल करे, सो क्यों मनहो विसारिये। मनहो क्यों विसारिये, एवड दाता जे अगन मह आहार पहुंचावे। उसनो क्यों पोहे न सकी, जिसनो अपनी लिव लावे। अपनी लिवा पे लाए, गुरमुख सदा संभालिये। कहे नानके एवड दाता, सो क्यों मनहो विसारिये।
जैसी अगन उधर मह तैसी बाहर माया, माया अगन सब इको जेही करतै खेल रचाया। जांत सपाणा तां जम्या परवार भला पाया, लिव छुड़की लगी तृष्णा माया अमर वरताया। एह माया जित हर विसरै मोह उपजै भौ दूजा लाया, कहे नानक गुर प्रसादी जिना लिव लागी तिनी विचे माया पाया। हर आप मुलक है मुल न पाया जाए, मुल न पाया जाए किसै विटहु रहे लोक बिललाए। ऐसा सतगुर जे मिलै तिसनो सिर सौंपिए विचहु आप जाए, जिसदा जियो तिस मिल रहै हर वसै मन आए। हर आप मुलक है भाग तिना के नानका जिन हर पल्लै पाए। हर रास मेरी मन वण जारा, हर रास मेरी मन वण जारा, सतगुर ते रास जानी। हर हर नित जप्यो जियो लाहा खट्यो दिहाड़ी, एहो धन तिना मिलिया जिन हर आपे भाणा। कहे नानक हर रास मेरी मन होआ वण जारा, ए रसना तू अनरस राच रही तेरी प्यास न जाए। प्यास न जाए होरत कितै जिचर हर रस पल्लै न पाए। हर रस पाए पल्लै पीए हर रस बहुड़ न तृष्णा लागै आए। एहो हर रस करमी पाईए सतगुर मिलै जिसाए। कहे नानक होर अनरस सब बीसरे जा हर वसै मन आए। ए शरीरा मेरिया हर तुम मह जोत रखी तां तू जग मह आया, हर जोत रखी तुद विच तां तू जग मह आया। हर आपे माता आपे पिता जिन जीओ पाए जगत दिखाया, गुर प्रसादी बुझिया तां चलत होआ चलत नदरी आया। कहे नानक सृष्टि का मूल रचिया जोत राखी तां तू जग मह आया। मन चाओ पया प्रभ आगम सुनिया, हर मंगल गाओ सखी गृह मंदर बनिया। हर गाओ मंगल नित सखिए सोग दुख ना व्यापे, गुर चरण लागे दिन सुभागे अपना पिर जापे। अनहत बाणी गुर शब्द जानी हर नाम हर रस भोगो, कहे नानक प्रभ आप मिलिया करण कारण जोगो। ए शरीरा मेरिया इस जग मह आए, कह क्या तुद कर्म कमाया के कर्म कमाया। तुद शरीरा जा तू जग मह आया, जिन हर तेरा रचन रचिया सो हर मन ना वसाया। गुर प्रसादी हर मन वसया पूर्व लिखिया पाया, कहे नानक एहो शरीर प्रवान हुआ जिन सतगुर स्यों चित लाया। ए नेत्र हो मेरो हर तुम मह जो तरी, हर बिन अवर न देखो कोई, हर बिन अवर न देखो कोई नदरी हर निहालिया। ए बिस संसार तुम देख दे एहो हर का रूप है हर रूप नदरी आया। गुर प्रसादी बुझिया जा वेखा हर एक है हर बिन अवर न कोई, कहे नानक एह नेत्र अंध से सतगुर मिले दिब दृष्ट होई। ए सरवण हो मेरो साचै सुनने नो पठाए, साचै सुनने नो पठाए शरीर लाए। सुनो सत बाणी जित सुनी मन तन हरिया होआ, रसना रस समाणी सच अलख बडाणी तां की गत कही न जाए। कहे नानक अमृत नाम सुनो पवित्र हो वह साचै सुनने नो पठाए। हर जियो गुफा अंदर रख कै बाजा पवन वजाया, वजाया बाजा पौन नौ द्वारे प्रगट किए दसवां गुप्त रखाया। गुरुद्वारे लाए भावनी एक न दसवा द्वार दिखाया, तह अनेक रूप नाओ नवनिध तिसदा अंत न जाई पाया। कहे नानक हर प्यारे जियो गुफा अंदर रख कै वाजा पवन बजाया। एहो साचा सुहिला साचै घर गावह, गावह तां सुहिला घर साचै जिथै सदा सच त्यावहे। सचो त्यावहे जां तुद भावहे गुरमुख जिना बुझावहे। एहो सच सबना का खसम है जिस बख्शे सोजन पावहे। कहे नानक सच सोहिला।

0: प्रभु के सिमरन गर्भ ना बसे,
1: प्रभु के सिमरन दुख जम न सहे,
0: प्रभु के सिमरन काल पर हरे,
1: प्रभु के सिमरन दुश्मन तरे,
0: प्रभु सिमरत कछु

और किसे स्थान उते जुल्म दियां हनेरियां चुलियां ने पापां दे बदल छाए ने ओ समय इतिहास दा खूनी पत्रा बनदा गया। समय समय अनुसार अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा अपने वखरे वखरे रंगा राही किसे पीर फकीर जा दरवेश दे जामे विच प्रगट होके सारी कायनात दे दुखां दर्दां दा नाश करन लई आप सहाई हुंदे रहे। दुष्ट दमन दशमेश पिता ने उस समय अवतार तारिया जदों के गरीब मजलूमा दुखियां भी चीखों कार सुन वाला और रखिया करन वाला धरती उत्ते होर कोई नहीं सी। पिता तो पुत्रा तक सारा सरबंश वतन कौम दे लेखे लाके गुप्त हनेरी रात नू माछी बाड़े दे बिया बान जंगलां विच टीम दा सराणा लाके चोजी प्रीतम लोखा पाने ता रोड़ा उत्ते सुते हुए सन, पर असल विच दशम पिता सुते हुए नहीं सन। भला कदे औखियां घड़िया विच वी कदे किसे नू रोड़ा उत्ते नींद आ सकदी है? जदों के लुकाई दे दुखां नू किसे ने आप जान बुझ के सीने नाल लाया होवे। कलंगियां वाले दशम पिता उस वेले अखां मीटी शायद इस ख्याल विच मगन सन कि किस तरह जुल्म दियां जड़ां पुट के देश दे गलों गुलामी दा फंदा लाया जाए। लुकाई ले सब कुछ वार के करों बेकर होके जंगलों दा वासी होके रहना फिर सिद्क ना हारना कमाल दुनिया दे इतिहास विच इस तो वड्डी कुर्बानी दी मिसाल होर कि

हे परमात्मा मैं तेरे दर दा भिखारी हां मंगता हां आरता मैंने मंगता जिथे आरता दा अर्थ दुखी है उथे इसका अर्थ मंगता भी है। भगत तन्ना जी शब्द आरंभ करते हुए कहते ने गोपाल गोमन कृतमी पाल मैंने पालना करने वाला सर्वशक्तिवान श्री वाह